सनातनोतनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृत सिन्धुर्भवतु सदायं क्रमोदायं भक्तिरसामृत सिन्धुः चरत परिभूत काल जाल भक्त्या मकरान शीलता मुक्ति नदिका नमस्यामि भक्ति रथ सपस्ती रखिल भगवन मंगल प्रसंगस्यं अज्ञा मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदायं एतस्य भगवद भक्ति रसामृतोपयो निधे चत्यार खलु वक्षन्ति भागा पूर्वा दयक्रमा तत्र पुण्य विभागेऽस्मिन् भक्ति भेद निरूपति अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीनां चतुष्टयं आद्या सामान्य भक्त्याभ्यां द्वितीया साधनाङ्किता भावास्कृता तृतीयात्र सूर्या प्रेमनुरूपिता तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यं मह्या कथयतु निस्फुटं लक्षणं क्रियते भक्ति रुष्टमाया सतान्वतम् अन्नाभिलाषिता शून्यम्।